तेरा वाहेगुरु कहो नानक सब तीन वडे आई कोई नाओ न जाने मेरा वाहेगुरु कहो नानक सब तीन वडे आई।

डोलन ते राखो प्रभु नानक देह कर हथ परम सन्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सन्मान योग भाई साहब जी अमृत गुरबाणी कीर्तन आप जी नूं सरवण करा रहे सन। जो परमेश्वर दा प्यारा है वो सब नूं ही प्यारा लगदा है, ते जे कोई उस दे विरोध विच ईर्षा अधीन अपनी जबान तो झक मार दे अप शब्द बोलता है उस दी ही खुवारी हुंदी है। संगत जी कल भाई साहब जिन्ना कीर्तन कीता दास तो पहला उन्होंने अमृत शब्द पढ़े समझो उस विचो श्री राग विच सतगुरां दा एक बचन है भी तेरी कीमत ना पवै हो केवड़ आखा नाओ जिस नल पदियां दी संपूर्णता हुंदी है। कल आपां इस अमृत बचन दी विचार कीते सी। अज राग बिलावल है ते भगत सदना जी दा शब्द है उस अमृत शब्द दे अर्थ करन दे आपां यतन करांगे। आप जितने गुरु चरणा विच हाजिर हो एक आवाज ठीक कर दो बहुत ज्यादा आ रही आप असीस बख्शो कोई रसना विरवी वांझी ना रहे प्यार अदब सहित गुरु बख्शी फतेह। संगत जी अदब नाल बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज

तैसे राम नामा बिन बपरो नामा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

sampho japa sampavo sampuja sampaptav असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दाता

ताके रूप न कथने जाहि, ना हुई मरहै न ठाके जाहि, जिनकै राम बसै मन माहि, तथै भगत वसै के लोक, करहै आनन्द सच्चा मन सोई, सचखंड वसै निरंकार, कर कर विखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वरपंड, जे को कथै ते अंत न अंत, तथै लोह लोह आकार।

चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चाचरी छंद न सत्रै न मित्रै न परमं न पित्रै न कर्मं न काय जन्म न जाय न चित्रै न मित्रै परे है पवित्रै प्रथि सैधि सैधृ सैकृ सै भगवती शंतुऐ प्रसाद कहते कि आशिज दिसे क्या भिज भेसै क्या गंज कर्मै क्या पंज भरमै क्या भिज लोकै क्या आदित सोकै के अवधूत बरने के विभूत करने के राजन प्रभ है धर्मंग तुझा है क्या अशोक बरने के सर्वा भरने के जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपा अनुप है।

करुणालय है, नृप नायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता करें, हरता हरें, परमात्म है, सर्व्यात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पूजा

रूपे नमो परम तत्व तत्व स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे

नमस्तुल प्रणाम्य समस्तुल प्रणाश्य अगंजुल अनाम्य समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणाशी सुतर्मंग विभूते।

अजायब बिभूते गजायब गनी में हरियं करियं क्रीमुल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्व

देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़ गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दान वदे फनिंद ने साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सबै अवलोक जपेंगे

हमरे दुष्ट सबै तुम कहवहु आफात दै मोहि बचावहु सुखी बसै मोरो परिवार सेव सिख्य सबै करतारा।

दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जग बनायो देव दैत्य अच्छन उपजायो आदंत एकाय अवतारा सोई गुरु समझियो हम।

आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा।

सालू सार्ग सागरा और गुण गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुण कुंभ हमीर खसम मेघ राग वह गाव है पांचाओ संग बरंगन लाव है सोठ गोट मलारी तुनी पुन गाव है आसा गुण गुनी

पाई। अवलोकन पुन्हे पुन्हे करो जन का दरसार, अमृत बचन मन में सिंचो, बंदो बार बार चितवो मन आसा करो, जन का संग मागो, नानक कहो प्रभु दया कर, दास चरणी लागो। सूही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मंड खंड ताहू मह पाओ, राख ले हो एहो बिखेई, जियो दे हो अपना नाव, रहा जाते नाही को सुखी ताके पाछा जाओ, छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ, करहो कृपा करुणावते तेरे हर गुण गाओ, नानक की प्रभु बेनती साध संग समाओ। राग सूही महला पंजवा, घर पंजवा पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, जप मन गोबिंद एक है अवर नहीं को लेखा, संत लाग मन्हे छाड़ दुबदा की कुरिया, रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण धरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया, तह आनंद करिया नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुड़िया बहुविध फिरिया, पर को हिरिया बिखना किरिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारा खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहरे ना फिरिया। सूही महला पंजवा, रास मंडलो कीनो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा, रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा, पेखा खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस निरारा, बारन चहन नाही मुख ना मासारा, कहनो ना जाए खेलो तुहारा, नानक रेण संत चनारा। सूही महला पंजवा, तो मैं आया सरनी आया, भरोसा आया कृपा आया, ज्यो पावै त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर हे पठाया, रहाओ महां तुर माया, जैसे पवन चुलाया, सुन सुन ही डराया, करोरो थ्रम राया, ग्रह अंध कूपाया, पावक सगराया, गही ओट साधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया। राग सूही महला पंजवा, कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर पास बेनंतिया, मिला नाम आधारा, तुठा सच्चा पात साहो ताप गया संसारा, भगता की टेक तू संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा, रहाओ सच तेरी सामग्री, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खा जीनिया, सच तेरा पासारा, तेरा रूप अगम है अनूप, तेरा दरसारा, हों कुरबानी तेरा सेवका, जिन हर नाम प्यारा, सबे इच्छा पूरिया, जा पाया गम अपारा, गुरु नानक मिलिया पा ब्रह्म, तेरिया चरणा को बलिहारा। राग सूही महला पंजवा, करु सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तेरा भाणा तू है मनाए हे, जिसनो हो हे दयाला, साई भगत जो तुद पावै तू, सर्व जी अप्रत पाला, मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावै सो परवान, मन तन तू है आधारी, रहाओ तू दयाल कृपाल, कृपा निध मनसा पूर्ण हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा, तू अथा हो अपार अत ऊंचा, कोई अव न तेरी पाते, एह अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुख दाते, दिन रहन सास सास गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मागा, साहेब तुठै पावा। सूही महला पंजवा, विसरहे नाही जित तू कबहू सो थान, तेरा केहा आठ पहर जित तुद त्याई, निर्मल होवै देहा, मेरे राम हो साथ सो थान, पालन आया खोजत खोजत पया, साध संग तिन सरणाई पाया, रहाओ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हार, इक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फेह पिललाते, ते पी मोहे माई, दस औता राजे होए वरते, महादेव ओ तूता, तिन पी अंत ना पायो, तेरा लाए थके बेभूता, सहज सुख आनंद नामरा, सह संति मंगल गाया, सफल दर्शन भेट्यो गुर नानक दा मंतन, हर हर त्याया। सूही महला पंजवा, करम धर्म पाखण जो दी सह, तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटै, संत हो सागर पार उतरिया, जे को बचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी तरिया, रहाओ कोट तीर्थ मजन इसनाना, इस कल मह मैल परिजै, साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर लीजै, वेद कतेब सिमरत सब सास्त, इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई, खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उपदेश चौवन्ना को साजा, गुरमुख नाम जपै उदरै, सो कल मह कट कट नक माझा। सूही महला पंजवा, जो किश करै सोई परमाने, ओए राम नाम रंगराते, तिन की शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पराते।

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਸੰਤਾ ਜੇਵੜ ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤਾ ਬਣਿਆਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉਂ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਈ ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਉਦਰੈ ਜਮ ਤਾ ਕੈ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਵੈ ਤਿਨ ਹਰ ਸਿਉ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭਉ ਕਾਟੈ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਆਵੈ ਜੇਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ ਜਾਨਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੇਤਕ ਵਰਨੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਪਏ ਨਿਕਾਣੇ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾ ਅਗਨ ਤੇ ਤੁਧ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਰਿਧਿ ਅੰਤਰ ਹੋ ਦੂਜੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੁਧ ਚਿੱਤੇ ਆਇਆ ਉਭਰੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਤੁਮਰਾ ਜਪ ਨਾਮ ਤੁਮਹਾਰਾ ਉਧਰੇ ਰਹਾਓ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢ ਲੀਏ ਤੁਮ ਆਪ ਪਹਿ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੀਏ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੰਧਨ ਕਾਜ ਛਡਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਭਰਮ ਗਿਆ ਪੈ ਮੋਹ ਬੇਨਾਸੇ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਵੇ ਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸੁਖਦਾਤੈ ਭੇਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਬ ਕਛੁ ਨਾ ਸੀਓ ਤਬ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਹੋਏ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਠਾਕੁਰ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੁੱਚ ਤੇ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਈ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਰਹਾਓ ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨਾ ਛੂਟੈ ਕਤਹੂੰ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਇਆਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਣੈ ਹਾਰੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਿਰਾਲੀ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਘਟ ਘਟ ਤੁਹੀ ਧਿਆਈਐ ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿੱਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈਐ ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ ਠਰੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਹੀ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਟੁਲਾਵਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ ਰਹਾਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਹੁ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰੋ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੇ ਸੇ ਤੀ ਰਾਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵੜਿਆਈ ਜਿਸਕੇ ਸੇ ਤਿੰਨ ਜਾਤੇ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੇ ਕਰਣਾ ਹਾਰਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮਾਗੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਉਂ ਤਾ ਜਿਉਂ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀ ਹੈ ਰਹਾਓ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਚਰਨ ਕਮ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਇ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰੈ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿਸਰਹੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਰਤੇ ਸੋ ਤੁਧ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੇ ਆਪਣੇ ਆਗੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੇ ਜਨਕੀ ਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਰਿਦੈ ਔਰ ਧਾਰੀ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਗ ਪਾਈ ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਤੁਧ ਪਹਿ ਸਾਰੀ ਤੁਧ ਜੇਵੜਿਵ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਲਹਿ ਸੋ ਲਾਗੈ ਭਗਤ ਤੁਹਾਰਾ ਸੋਈ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜੇ ਮੰਗੋ ਇੱਕੋ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾ ਭਾਉ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ਰਹਾਉ ਜੋ ਤੇਰੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲ ਆਸਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੇ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੈ ਪਰਵਾਸੈ ਪੰਚ ਦੁਸਦਾ ਸਦਹੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛੁ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਗਲ ਤਿਆਗੋਰ ਸਰਨੀ ਆਇਆ ਰੱਖੋ ਰੱਖ ਨਹਾਰੇ ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਵੇ ਤਿਤ ਹਮ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਆਲਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਸੁਆਮੀ ਰਹਾਓ ਆਠ ਪਹਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਉ ਤਰੀਐ ਆਪ ਤਿਆਗ ਹੋਈਐ ਸਵਰੇਣਾ ਜੀਵਤਿਆਂ ਯੋ ਮਰੀਐ ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਸਕਾ ਜਗ ਭੀਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਵ ਜਾਪੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰ ਤਿਸਕੇ ਪੂੰਜਿਸ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ
दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजै नानक सादर वाला। राग सूही अष्टपदिया महला पहला कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सबे अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत में लावा होई। ना मैं रूप न बंके नैना ना कुल टंग न मीठे बैणा रहाओ। सहज सिगार कामण करे आवै ता सोहा गण जा कंतै पावै। ना तिस रूप न रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई। सुरत मत नाही चतुराई कर कृपा प्रवला हो पाई। खरी सियाणी कंत ना पाणी माया लागी भरम भुलाणी। हो मैं जाई तक अंत समाई तो कामन प्यारे नव निध पाई। अनक जन्म बिशरत दुख पाया कर गह ले हो प्रीतम प्रभ राया। भणित नानक सोह हैपी हो सी जय पावै प्यारा तै रावे सी। सूही महला पहला कर नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कच्चा रंग को संभुका थोड़िया दिन चार जियो। विण नावे भ्रम भुलिया ठग मुठी कूड़े आर जियो। सच्चे से तीरत्या जन्म न दूजी वार जियो। रंगे काक्या रंगी है जो रते रंग लाए जियो। रंगण वाला सेवी है सच्चे स्यों चित लाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवहे बिन भागा तन नाहे जियो। अवगण मुठी जे फिरे बदक थाए न पाहे जियो। गुर राखे से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो। तिन मुख नाम ना उपजै दूजै व्यापे चोर जियो। मूल न बूझे अपना से पशुआ से ढोर जियो। नित नित खुशिया मन करे नित नित मंगै सुख जियो। करता चित न आवई फिर फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसै ते तो तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबिया सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगै देवना पुछै कर बिचार जियो। सच्चे की लिव उबरै बक्से बक्सनहार जियो। अनको की जै मित्रा खाक रलै मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवै जाए जियो। नद प्रभु ते छुट्टी है नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान वे हुणिया गुर बिन ज्ञान न पाल जियो। खिंचो तान वे गुचिया बुरा भला दोए नाल जियो। बिन शब्द पैर त्या सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण धारिया सब सै देह आधार जियो। सो क्यों मन हो वे सारिया सदा सदा दातार जियो। नानक नाम न विसरै निधारा आधार जियो। सूही महला पहला काफी कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मानस जन्म दो लंब गुरमुख पाया मन तन हुए चुलंब। जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार वखर सचुलै। पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ। मन तन सच सलाहे साचे मन पाया। लाल रता मन मान्य गुरु पूरा पाया। हों चीवा गुण सारे अंतर तू वसै। तू वसे मन माहे सहजे रस रसै। मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा। गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाले प्रीतम अपना। जे चले गुण नाल नाही दुख संता अपना। मनमुख भरम भुलाना ना ते सुरवंग है। मरसी होए वेडाना मन तन भंग है। गुर की कार कमाए लाह करे आणिया। गुर बाणी निर्वाण शब्द पछाणिया। एक नानक की अरदास जे तो दुभावसी। मैं दीजा नाम निवास हर गुण गावसी। सूही महला पहला। ज्यों आनन लोहा पाए भन कढ़ाइया। त्यों साकत जोनी पाए पवै पवैया। बिन बूझे सब दुख दुख कमावना। हो मैं आवै जाए भरम भुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखन हार हर नाम ते आईए। मेल हे तुझे रजाए सब दुख कमाइया। तू कर कर वेखे आप देह सो पाइया। तू देखे थाप ओ थाप धर भी नाइया। देही होव खाक पवन ओडाइया। इहो किथै घर ओ ताक महल न पाइया। देहो दीवी अंध कोर कब मुहैया। गर्व मुसै कर चोर किस रुआइया। गुरमुख चोर न लाग हर नाम जगाइया। शब्द निवारी आग जोत दीपाइया। लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाइया। सदा रह निकाम जे गुरमत पाइया। रात देह हर नाम मन वसाइया। नानक मेल मिलाए जे तुद पाइया। सूही महला पहला। मन होना नाम विसार एहनस त्याइया। त्यों ज्यों राखे कृपा धार ते वै सुख पाइया। मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी। रहो साहिब की टेक ना मोह मोहनी। रहाओ जे देखो तेह नाल गुर देखा लिया। अंतर बाहर पाल सब दे निहालिया।
सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना। तुद भावै तिवै रजाए परम पाओ पंजना। जन्मति दुख लागै मरणा आए कै, जन्म मरण परवाणु हर गुण गाए कै। हो नाही तू होवे तुद ही साजिया, आपे थापे ओ थापे सब दे निवाजिया। देही पसम रुलाए ना जापी कह गया, आपे रहया समाए सो विस्मा दुपहया। तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेक है दूरे अंतर भी तू है। मैं दीजै नाम निवास अंतर सांत होए, गुण गावै नानक दास सतगुर मत दे। राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां। एक ओहंकार सतगुर प्रसाद, नामै ही ते सब किश हुआ, बिन सतगुर नाम न जापै। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साधु न जापै। कोटि बदला जन्म गवाया, चीनस नाही आपै। गुरमुख होवै ता एको जाणै, होमै दुख न संतापै। बलिहारी गुर अपने विटो, जिन साचे सिंह लिबलाई। शब्द चीने आत्म प्रगासिया, सहज रहे असमाई रहाओ। गुरमुख गावै गुरमुख बूझै, गुरमुख शब्द बिचारे। जियो पिंड सब गुरते बुझै, गुरमुख कारज सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावै, बिख खट्टे संसारे। माया मोहे सदा दुख पाए, बिन गुर अत प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चालै सतगुर पाए। साचा शब्द सिफत है साची, साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखै, होमै विच हो जाए। आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा लिपत साचा रंग राता, गुर कै सहज सुभाए। मन मुख सद ही कूड़ो बोलै, बिख बीजै बिख खाए। जमकाल भादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छडाए। सच्चा तीर्थ जित सत सरनावन, गुरमुख आप बुझाए। अठ सठ तीर्थ गुर शब्द दे खाए, तित नातै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, नामल लगै ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सालाह, पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर तिस केरा, दुरमत कहण ना जाए। हुक्म होवै ता निर्मल होवै, होमै विच हो जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, तृष्णा अग्न बुझाए। गुर कै शब्द राता, सहजे माता सहज रहे असमाए। हर का नाम सतकर जाणै, गुर कै पाए प्यारे। सच्ची बड़ियाई गुर ते पाई, सच्चै नाए प्यारे। एको सच्चा सब है वरतै, विला को विचारे। आपे मेल ले तबकसे, सच्ची भगत सवारे। सबो सच सच सच वरतै, गुरमुख को ही जाणै। जमण मरणा हुक्म वरतै, गुरमुख आप पछाणै। नाम त्याए तां सतगुर पाए, जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिस दा सब किछ होवै, जे विचो आप गवाए। सूही महला तीजा, काया कामणे अत सवाल्यो। पिर वसै जिस नाले, पेरे सच्चे ते सदा सुहागण। गुर का शब्द संभाले, हर की भगत सदा रंग राता। होमै विचो जाले, वाह वाह पूरे गुर की बाणी। पूरे गुर ते उपजी साच समाणी। रहाओ काया अंदर सब किश वसै, खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता, वसै सबना करे प्रतपाला। काया कावन सदा सुहेली, गुरमुख नाम संभाला। काया अंदर आपे वसै, लखना लख्या जाई। मन मुख मुगद बूझै नाही, बाहर पालन जाई। सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाई। काया अंदर रतन पदार्थ भगत भरे भंडारा। इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पट्टन बाजारा। इस काया अंदर नाम नौ निध पाईऐ, गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तोलावै, आपे तोलन हारा। इहो मन रतन जवाहर, इहो मन रतन जवाहर माणक। तिसका मोल अफारा, मोल कीती नाम पाईऐ, नाही नाम पाईऐ गुर विचारा। गुरमुख होवै सो काया खोजै, होर सब भरम पुलाई। जिसनो दे सोई जन पावै, होर क्या करो को करे चतुराई। काया अंदर पौ पाओ वसै, गुर प्रसादी पाई। काया अंदर ब्रह्मा बिसन महेसा, सब उपत जित संसारा। सच्चा अपना खेल उरचाया, आवा गुण पासारा। पूरा सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा। सा काया जो सतगुर सेवै, सच्चा आप सवारी। बिरनावै दर ढोई नाही, ता जम करे खुआरी। नानक सच वड़ियाई पाए, जिसनो हर कृपा धारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुनिया ना साला है जो मर वंशी। लोक ना साला है जो मर खाक थी।
ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਆ, ਸੱਚਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਰਹਾਉ। ਦੁਨੀਆ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਨਮੁਖ ਦਜ ਮਰਨ, ਜਮਪੁਰ ਬਦੇ ਮਾਰੀ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਖਾਰਤਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਨ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਰਹਨ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਰਚਾਨ, ਤਿਸਨਾ ਭੁਖਨਾ ਉਤਰੈ ਅੰਦਰ ਜਲਤ ਫਿਰਨ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤਾ ਵੈਰ ਕਰਨ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਸਗਲੇ ਕੁੱਲ ਡੋਬਨ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਦ ਕਰਨ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਏ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪ ਹੀ ਖਾਵਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੈ ਪਰਥਾਏ, ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਵਰਾ ਬਦੇ ਸੇਨ, ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ। ਦੇਸੀ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਜਿਨਿਓ ਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਏਕ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਤਣੀ, ਸੋ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲ ਲਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਸੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹਿ ਹੁਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਸੋ ਸੋਹ ਸੱਚਾ ਵੀਸਰੈ ਤਿਰਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਸਾਚ ਰੱਖਾ ਉਰਧਾਰ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਚਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਸਾ ਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਨ ਨ ਭਿੱਜੀ ਅਤ ਮੈਲੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ, ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਈਐ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਿਕੋਰ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾਰ। ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਉਥੈ ਕੂੜੇ ਨਾ ਟਿਕਾਨੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੇ ਦੁਖੀ ਮਾਹ ਪਚਾਨੈ। ਹੋਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ। ਸੰਤਾ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ, ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਸੱਚਿਆਰ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹਨਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਹੋਮੈ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਰੋਗ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਠਾਕਰ ਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਏ, ਤਨ ਮਨ ਸੋ ਪੀ ਆਗੈ ਧਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗੋਆਏ। ਖਿੰਚੋ ਤਾਣ ਵੇ ਗੁੱਚੀਆ ਇੱਕ ਸਿਉ ਲਵਲਾਏ, ਹੁਮੈ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲੇ ਸੇ ਭਾਏ ਰਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਨ, ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਦਰ ਸੱਚਾ ਦੇ ਸਨ। ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਸੱਜਣਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੇ ਵਨ, ਅਵਗਣ ਵੇਕਣ ਪਲ ਰਨ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਜ ਕਰਨ। ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਜ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰੇਨ, ਸੱਚ ਵੜਨ ਜਿਹੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਲਾਹ ਨਾਮ ਲੈਨ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਸੰਚੀਐ, ਚੱਲੈ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆ ਨਾਲ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਮੁੱਠੀ ਜਮਕਾਲ। ਮਨ ਕਾਤੋ ਸਾਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਲ, ਇਹੋ ਖਰਚ ਅਖੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਨ ਮੂਲੋ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸੇ ਪਤ ਗਵਾਏ, ਇਹੋ ਜਗਤ ਮੋਹੇ ਦੂਜੈ ਵਿਆਪਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸੱਚੋ ਧਿਆਏ। ਹਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤਨ ਰੱਪੈ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਸੋਹੋ ਮੇਰਾ ਰੰਗੁਲਾ ਰੰਗੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਕਾਮਣ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜੈ ਜਾ ਪਿਰਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਚਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਭੀ ਮਿਲਣ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਵੰਨੇ, ਅੰਤਰ ਨਵ ਨਿਦ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਨ ਖਰਚਨ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟਈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਰਵਨ। ਨਾ ਓਏ ਜਨਮੇ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਓਏ ਦੁੱਖ ਸਹਨ, ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਰ ਸਿਉ ਕੇਲ ਕਰਨ। ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਰਹਨ, ਏਸੋ ਜਗ ਮਹਿ ਵਿਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਲਹਨ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਜੀ ਸੂਖਮ ਅਗੁਮ ਹੈ ਕਿਤ ਬਿਧ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ ਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਨ, ਹਉ ਤਿਨ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰਨ, ਮਨ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਵਨ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਹਨ, ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਿਆ ਸੇ ਹੰਸੇ ਨਾਮ ਲਹਨ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਗਨ, ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਲੈਨ। ਵਡਭਾਗੀ ਘਰ ਖੋਜਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਵੇਖਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਵ ਨ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ ਤਿਤ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸੈ ਸਭ ਥਾਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਸਬਦ ਵੇਖੋ ਲਿਵਲਾਏ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚ ਰਾਖਦਾ ਜਿਚੁਰ ਹੈ ਦੁਹ ਮਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਬੁਝਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਪਾਏ ਥਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ ਗੁਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵੇਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿਤਾਈ।
कृपा करहे ता सतगुर मेल हे हर हर नाम ते आई रहाओ जे सुख देह ता तुझे अराधी दुख भी तुझै ते आई जे पुख देह ता इतही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी ढोवा जो देव हे सो खाई नानक गरीब टह पया द्वारा हर मिल लहो वड़ियाई अखी काढ़ धरी चरणा तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बाहले ता तुझे अराधी जे मार कढ़े पीत आई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदा ता छोड़ ना जाई जे तुद वल रह ता कोई कहो आखो तुद विसरै मर जाई वार वार जाई गुर ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा पया दीवाना हर तो दर्शन कहताई झखड़ झागी मीहो वरसै भी गुरु देखण जाई सुमंद सागर होवै बहु खरा गुर सिख लंग गुर पह जाई ज्यों पुराणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवका होए सेवक वरता कर कर बिनो भुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे तिहाई जो तुद सेव है सो तू है होवे तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस पावे ते सुदेवाई जिस तू दे है सोई जन पाए हो निफल सब चतुराई सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जा गाई एक दान मंगै नानक बेचारा हरदासन दास कराई जे गुर चिड़के ता मीठा लागै जे बक्से ता गुर वड़ियाई गुर मुखे बोल है सो थाए पाए मन मुख किश थाए न पाई पाला ककर वर्फ वसै गुर सिख गुर देखण जाई सब दिन सरह देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर धराई अनेक उपाव करी गुर कारण गुर भावै सो थाए पाई रहन दिन सगो चरण आराधी दया करो मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्त अगाई नानक का प्रभ पूर रहो है जत कत तत गोसाई राग सूही महला चौथा अष्टपदियां घर दसवां एक ओहकार सतगुर प्रसाद अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम आपणै तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने मैं हर हर नाम विसाहो गुर पूरे ते पाया अमृत अगम अथाहो रहाओ हों सतगुर वेख विगसिया नामे लगा प्यार कृपा कर कै मेलियो न पाया मोख द्वार सतगुर बिरही नाम का जे मिलै ता तन मन दे हो जे पूर्व होवै लिखिया ता अमृत सहज पिए हो सुतियां गुर असा लाही उठतियां पी गुर आ लाओ कोई असा गुरमुख जे मिलै हों ताके धोवा पाओ कोई असा सज्जन लोड़ लोहो मैं प्रीतम देह मिलाए सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज भाए सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखण का चाओ हों तिस बिन घड़ी न जीवो बिन देखे मर जाओ ज्यों मछली बिन पानिया रह न कितै ओ पाए त्यों हर बिन संत न जीवे बिन हर नामै मर जाए मैं सतगुर सीती पिर हड़ी क्यों गुर बिन जीवा माओ मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहाओ हर हर नाम रतन है गुरु तुठा देवै माए मैं तर सच्चे नाम की हर नाम रह लिमलाए गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नाम दे दृढ़ाए जिस प्रावत सो लह गुर चरनी लागै आए अकथ कहानी प्रेम की को प्रीतम आखै आए तिस देवा मने अपना निव निव लागा पाए सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजान सतगुर मीत मिलाया मैं सदा सदा तेरा तान सतगुर मेरा सदा सदा ना आवै ना जाए ओह अविनाशी पुरख है सब मैं रहे असमाए राम नाम तंद संचिया साबत पूंजी रास नानक दरगह मन्या गुर पूरे साबास राग सूही अष्टपदियां महला पंजवां घर पहला एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद उर्ज रहो बिख्या कै संगा मनहे ब्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कत पाईऐ पूर्ण परमेसर रहाओ मोह मगन मह रहे आबे आपे अत त्रिसना कबू नहीं त्रापे बसे क्रोध श्री चंडारा ज्ञान ना सूजै महा गुबारा भ्रामत ब्यापत चरे कवारा जान ना पाईऐ परब दर बारा आसा देसा बंद पराना महल ना पावै फिरत बेगाना सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास ज्यों जल बिन मीना कशु सियान ओ कितना मोरी एक आशा को प्रभ तोरी करो बेंती संतन पासे मेल लै हो नानक अरदासे भयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया रहा दूजा राग सूही महला पंजवां घरो तीजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद
मिथिन मोह अगन सोक सागर कर कृपा उदर हर नागर चरण कमल सरनाय नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूतना भेटन जीवन रूप अनूप दयाला रवन गुणा कटिया जम जाला अमृत नाम रसनित जापै रोग रूप माया न व्यापै जप गोविंद संगी सब तारे पोहत नाही पंच वट वारे मन बच क्रम प्रभ एक त्याए सर फला सोई जन पाए तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना केवल नाम भक्त रस दीना आद मद अंत प्रभ सोई नानक तिस बने अवर न कोई राग सूही महला पंजवा अष्टपतिया कर नावा एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद जिन डिठिया मन रहसिया क्यों पाया तिन संग जियो संत सज्जन मन मित्र से लायन प्रभ सिंह रंग जियो तिन सिंह प्रीत न तुटे कब हुन होवे भंग जियो पा ब्रह्म प्रभ कर दया गुण गावा तेरे नित जियो आय मिल हो संत सजना नाम जपे मन मित जियो रहाओ देखै सुने न जाने ही माया मोहया अंध जियो काची देहा विनसणी कूड़ कमावे तंद जियो नाम त्यावे से जिन चले गुर पूरे संबंध जियो हुक्मे जुग में आया चलन हुक्म संजोग जियो हुक्मे परपंच पसरे हुक्म करे रस भोग जियो जिसनो करता विसरै तिसे विछोड़ा सोग जियो आपने प्रभाणिया दरग है पैदा जाए जियो ऐथै सुख मुख उचला इको नाम त्याए जियो आदर दिता पा ब्रह्म गुर सेविया सत पाए जियो थं थनंतर रव रहया सर्व जिया प्रतपाल जियो सच खजाना संचिया एक नाम तन माल जियो मन ते कभु ना विसरै जा आपे होए दयाल जियो आवण जाना रह गए मन उठा निरहंकार जियो ताका अंत न पाईया ऊंचा गम अपार जियो जिस पर भी अपना विसरै सो मर जम्मै लखवार जियो साच नेहो तिन प्रीत मान जिन मन उठाया आप जियो गुण साजी तिन संग बसे आठ पह प्रभ जाप जियो रंग रते परमेश्वर है बिनसे सकल संताप जियो तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो तू समरथ तू सरमै तू है बुद्ध विवेक जियो नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो राग सूही महला पंजवा अष्टपतिया घर दसवां काफी एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जे भुली जे चुकी साई भी तह जी काढ़िया जिन्ना ने हो दू जाने लगा झूर मरहो से वाडिया हो ना छोड़ो कंत पास आसदा रंगीला लाल प्यारा ए हो महन जाया आसरा रहाओ सज्जन तू है सैन तू मैं तुझ ऊपर बहु माणिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया जे तू तुठा कृपा निधाना दूजा वे खाल एहा पाए मूह दातनी नित हृदय खसमाल पाव जुलाई पंद तौ नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुरथी वै किरपाल किती लख करोड़ प्रिय रोम ना पुजन तेरिया तू साही हूँ साहू हाँ कह न सका गुण तेरिया सहिया तो असंख मनियो हब वधानिया हिक भोरी नदर निहाल देह दर्श रंग माणिया जै डिठे मन धीरी है किल विख वन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहे पर पूरे होए निमाणी टह पई मिलिया सह सुभाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाए सूही महला पंजवा सिमरित वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होछिया नाम निधान अपार भगता मन वसै जन मर मोह दुख साधु संग नसै रहाओ मोहे बाद अहंकार सर्प रुन्या सुख न पायन मूल नाम विछुन्या मेरी मेरी धार बंधन बंधिया नरक सुरग अवतार माया तंदिया सोदत सोदत सोद तत् बीचारिया नाम बिना सुख ना है सर पर हारिया आवे जाहे अनेक मर मर जन्मते बिन बूझे सब वाद जोनी परमते जिन को पह दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिनी तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा ते सहे वेसर नाही दातार अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो राग सूही महला पहला कुचजी एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अमावण जोसड़े हो क्यों सोहरावण जाओ जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाना मेरा नाओ जियो जिनी सखी सोह राव्या से अंबी छावड़ी है जियो से गुण मन न आवनी हो क्या जी दोस्त रहे हो जियो क्या गुण तेरे विथरा हो क्या क्या किना तेरा नाओ जियो एक तो टोल ना अंबड़ा हो सद कुरबान है तेरा जाओ जियो सुवेना रूपा रंगला अमृत रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन सिंह लाया चित्त जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो हो इन्नी टोली भुलिया सो तिस कंत न बैठी पास जियो
अंबर कुंजा कुलिया बग बैठे आए जियो, सा तन चली साहुरा क्या मोह देसी अग्गै जाए जियो। सुती सुती झाल थिया भुली वाटड़ियास जियो, तैसह नालो मतियस दुखां कू तरियास जियो। तुद तो गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो, सबे राती सोहा गणी मैं डोहा गण का ही रात जियो। सूही महला पहला सोच जी, जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो। तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो, भाणै तख्त बड़ाइया भाणै भीख उदास जियो। भाणै थल सिर सर वह कमल फुलै आकाश जियो, भाणै पव जल लंघियै भाणै मंझ प्रयास जियो। भाणै सो सोह रंगला सिफत रत्ता गुणतास जियो, भाणै सोह पिहावला हो आवण जाण मोयास जियो। तू सोह अगम अतोलवा हो कह कह टह पहियास जियो, क्या मागो क्या कह सुनी मैं दर्शन भूख प्यास जियो। गुरसब दी सोह पाया सचो नानक की अरदास जियो। सूही महला पंजवां, गुणवंती जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निवला गौ पाए जियो। आखा बिरथ जी की गुर सज्जन देह मिलाए जियो, सोई दस उप देसड़ा मेरा मन अनंत ना काहू जाए जियो। एह मन तैंकू डेव सा मैं मार्ग देह बताए जियो, हो आया दूर हो चल कै मैं तकी तो शरण आए जियो। मैं आशा रखी चित मह मेरा सब दुख गवाए जियो, इत मार्ग चले भाइयड़े गुर कह सुकार कमाए जियो। त्यांगे मन की मतड़ी वे सारे दूजा पाओ जियो, इं पावे हर दसा बड़ा नह लगै तत्ती वाओ जियो। हो आप हो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो, हर भगत खजाना बख्शिया गुर नानक किया पसाओ जियो। मैं बोहड़ना तृष्णा पुखड़ी हों रजा तृप्त अगाए जियो, जो गुर दी सह सिखड़ा तिस निव निवला गौ पाए जियो। राग सूही छंत महला पहला कर पहला, एक ओहंकार सतगुर प्रसाद भर जोबन मैं मत पैयड़ै घर पाहुनी बलराम जियो। मैली अवगण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जियो, गुण सार ना जानी भरम भुलानी जोबन बाद गवाया। वर घर दर दर्शन नहीं जाता पिरका सहज न पाया, सतगुर पूछन मार्ग चाली सूती रहन बेहानी। नानक बाल तन रा डेपा बिन पे तन कुमलानी, बाबा मैं वर देह मैं हर वर भावै तिसकी बलराम जियो। रव रहा जुग चार तिर पवन बाणी जिसकी बलराम जियो, तिर पवन कंतर वै सो हागण अवगणवंती दूरे जैसी असा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे। हर की नार सो सर्व सोहागण राणा मैलै वेसे, नानक मैं वर साचा पावै जुग जुग प्रीतम तैसे। बाबा लगन गणाई हम पी वन्या साहु रह बलराम जियो, साह हुकुम रजाए सोना चलै जो प्रभ करै बलराम जियो। किरत पया करतै कर पाया मेट न सकै कोई, जाई नाउ नरह नह केवल रब रहे तेहु लोई। माए निरा सिरोए वे छुन्नी बाली बालै हे ते, नानक साच सब सुख मिहली गुर चरणी प्रभ चेते। बा बुल दित्री दूर न आवै घर पैया बलराम जियो, रहसी वेख हदूर फिर रावी घर सोहिया बलराम जियो। साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी पर धन्य, संजोगी मेल थान सोहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सत संतोख सदा सच सच पल्लै सच बोलै फिर पाए, नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमते अंक समाए। राग सूही महला पहला, छंत घर दूजा एक ओहंकार सतगुर प्रसाद। हम घर साजने आए साचा मेल मिलाए सहज मिलाए, हर मन पाए पंच मिले सुख पाया। साई वस्त प्राप्त होई जिस सीति मन लाया, अंधुन मेल पया मन मान्या कर मंदिर सोहाए। पंच शब्द तुन अन हदवा जे हम कर साजने आए, आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे। सच मंगल गावो ता प्रभ पाव हो सोहला जुग चारे, अपने कर आया धन सोहाया कारज सब दसवारे। ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रे पवन रूप देखाया, सखी मिल हो रस मंगल गावो हम कर साजने आया। मन तन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना, अंतर रतन पदार्थ मेरा परम तत्व विचारो। जानत भेख तू सफल उदाता सिर से दे बनहारो, तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना। सुनो सखी मन मोहन मोहया तन मन अमृत पीना, आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा। तुझ बिन कौन बुझाए सिद्ध साध सियाने के ते, तुझ बिन कवन कहाए। काल बेकाल पहे देवाने मन राख्या गुर ठाए, नानक अवगुण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए।
राग सूही महला पहला कर तीजा एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद। आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम, करे अपना खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन पर मेरा मैं तेरा परवासा, दर्शन देख पैने केवल जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए, नानक साजन को बल जाइए साच मिले करे आए। करे आयड़े साजना तां तन खरी सरसी राम, हरे मोहड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम। गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रावी रंग रातै, अवगण मार गुणी कर छाया पूरा पुरख विधातै। तस्कर मार वसी पचायन अदल करे विचारे, नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे। वर पाहेड़ा बालदड़िए आसा मनसा पूरी राम, पिर रावेड़ी शब्द रली रव रहे अनह दूरी राम। प्रभ दू न होई कट कट सोई तिसकी नार सबाई, आपे रसिया आपे रावे ज्यो तिस दी बड़ियाई। अमर अडोल अमोल अपारा गुर पूरा सच पाइया, नानक आपे जोग सजोगी नद करे लवलाइया। फिर उचड़िया मारड़िया तिहु लो आ सिरता जा राम, हो बिसम पई देख गुणा अनह शब्द अगाजा राम। शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो। पाते मत पूरी पूरा परवाना ना आवै ना जासी, नानक गुरमुख आप पछाणै प्रभ जैसे अविनासी। एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही छंत महला पहला कर चौथा। जिन किया तिन देखिया जग तंदड़ै लाया, दान तेरा कट चांदना तन चंदो दीपाया। चंदो दीपाया दान हर का दुख अंधेरा उठ गया। गुण जंग लाड़े नाल सोहै परख मोहनिया लया, विवाह हुआ सोभ सीती पंच सब धी आया। जिन किया तिन देखिया जग तंदड़ै लाया, हम बलिहारी साजना मीता अवरीता। इहो तन जिन स्यों गाड़िया मन लीड़ा दीता, लिया ता दिया मान। जिन स्यों से सज्जन क्यों विसरहे, जिन दिस आया होहे रलिया जी सेती गह रहे है। सगल गुण अवगुण ना कोई हो हे नीता, नीता हम बलिहारी साजना मीता वरीता। गुणा का हो वह वासला कट वासल जै, जे गुण होवन साजना होवन साजना मिल साज करीजै। साज करीजै गुणे केरी छोड़ अवगण चलिया, पहे पटंबर कर अडंबर अपना पेड़ मलिया। जिथै जाए बहिया भला कहिया, झोले अमृत पीजै। गुणा का होवै वासला कट वास लीजै, आप करे किसी आखे होर करे ना कोई। आखण ता को जाइया जे भूलड़ा होई, जे होए भूला जाए कहिया आप करता क्यों भुलै। सुने देखे बाज कहिया दान अणवंग्या देवै, दान दे दाता जग विदाता नानका सच सोई। आप करे किसी आख्या होर करे ना कोई, सूही महला पहला। मेरा मन राता गुण रवै मन पावै सोई, गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई। सुख सहज आवै साच पावै, साच की मत क्यों टलै। स्नान दान सुज्ञान मज्जन आप अछलियों क्यों छलै। पर पंच मोह बेकार था के कूड़ कपटना दोई, मेरा मन राता गुण रवै मन भावै सा सोई। साहिब सो सा लाहिया जिन कारुण किया, मैल लागी मन मैलिया किन अमृत पिया। मथ अमृत पिया इहो मन दिया गुर पह मोल कराया। आपना प्रभ सहज पछाता जा मन साचा लाया, तिस नाल गुण गावा जे तिस भावा क्यों मिलै होए पराया। साहिब सो सा लाहिया जिन जगत ओ पाया, आए गया की ना आयो क्यों आवै जाता। प्रीतम से मन मान्या हसी तीराता, साहिब रंग राता सच की बाता। जिन बिंब का कोट ओ सारिया, पांच पूनाए को आप सिरंदा जिन सच का पिंड सवारिया। हम अवगणियारे तू सुन प्यारे, तुत भावै सच सोई। आवन जाना ना थिया साची मत होई। अंजन दासा अंजिया जासा पिर भावै, समझै सूझै जानिया जे आप जान आवै। आप जान आवै मार्ग पावै आपे मनुआ लेवे। कर्म सुकर्म कराए आपे कीमत कौन अपे वे। तंत मंत पाखंड न जाने राम हृदय मन मानिया। अंजुन नाम तिसै ते सूझै गुर सबदी सच जानिया। साजन होवन आपने क्यों पर कर जाही, साजन रत्ते सच के संगे मन माही। मन माहे साजन करहे लिया कर्म धर्म सबाया। अठ सठ तीत पुन पूजा नाम साचा पाया, आप साजे थाप वेखै किसै भाण तिसै भाणा पाया। साजन रंग रंगीलरे रंग लाल बनाया, अंधा अगू जिये थिया क्यों पादर जाने। आप मुसहमत होछिया क्यों राहो जाने, क्यों राहे जावै महल पावै अंध कीमत अंधली। विण नाम हर के कछ ना सूझै अंध बुढ़ो तलरी धंधली। दिन रात चानन चा उपजै शब्द गुर का मन वसै, कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राहो पादर गुर दसै।
मन परदेसी जे थिया सब देश पर आया, किस पह खोलो गंठड़ी दुखी भरे आया, दुखी भरे आया जगद सवाया, कौन जाना बिद मेरिया, आवने जावने खरे डरावने तो ना आवै फीरिया, ना वे हुने ऊने झूने ना गुर शब्द सुनाया, मन परदेसी जे थिया सब देश पर आया, गुर महली घर अपना सो भर पुर लीना, सेवक सेवा ता करे सच शब्द पतीना, शब्द पतीजा अंक भीजा सो महल महला अंतरे, आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे, गुर शब्द मेला ता सुहेला बाजंत अनहद बीना, गुर महली घर अपना सो भर पुर लीना, कीता क्या सलाहिया कर वेखै सोई, ता की कीमत न पवै जे लोचै कोई, कीमत सो पावे आप जाना वै आप अभुल न भुले, जय जयकार करे तुद पावे गुर का शब्द अमुले, हीन हो नीच करो बेनंती साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया देवै मत साई, राग सूही छंत महला तीजा कर दूजा, एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोहरा हर त्याव हो गुरमुख हर फल पाव हो, गुरमुख फल पाव हो हर नाम त्याव हो, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुर अपने विट हो जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जाप हो, सुख फल हर जन पाव हो, नानक कह सुन हो जन पाई, सुख सोहरा हर त्याव हो, सुन हर गुण पीने सहज पाए, गुरमत सहजे नाम ते आए, जिन को तुर लिखिया तिन गुरु मिलिया, तिन जन्म मरण पहु का भागा, अंदर हो दुरमत दूजी खोई, सो जन हल लागा, जिनको कृपा किन्नी मेरे स्वामी, तिन अंदन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज भाए, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुरु तिबजै शब्द विचारा, गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा, जिस कृपा करे सो पाए, सहजे गुण गावे दिन राति केल विक सब गवाए, सबको तेरा तू सबना का हो तेरा तू हमारा, जुग मह राम नाम निस्तारा, साज न्याय उठे कर माही, हर गुण गावे तृप्त अगाही, हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लागै आए, दह दिस पूज होवे हर जन की जो हर हर नाम ते आए, नानक हर आपे जोड़वे छोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साज न्याय उठे कर माही, एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही महला तीजा कर तीजा, भगत जना की हर जियो राख्या जुग जुग रखदा आया, राम सो भगत जो गुरमुख होवै हुम मैं शब्द जलाया, राम हुम मैं शब्द जलाया मेरे हर पाए आया, जिस ती साची बाणी सच्ची भगत करे दिन राती गुरमुख आख वखाणी, भगता की चाल सच्ची अत निर्मल नाम सच्चा मन पाया, नानक भगत सोहे दरसाचै जिनी सचो सचो कमाया, हर भगता की जात पत है भगत हर कै नाम समाणे, राम हर भगत करे विच हो आप गवावे जिन गुण अवगुण पछाणे, राम गुण औगुण पछाणे हर नाम वखाणे, पै भगत मीठी लागी अंदिन भगत करे दिन राति कर ही मह बैरागी, भगति राते सदा मन निर्मल जी हर जियो वेख सदा नाले, नानक से भगत हर कै दर साचे अंदर नाम संभाले, मन मुख भगत करे बिन सतगुर भगत न हो ही राम, हो मैं माया रोग व्यापे मर जन्मे दुख हो ही राम, मरे जन्मे दुख हो ही दूजै पाए पर जवे गोई विण गुर तत् न जान्या, भगत वे हुना सब जग परम्यंत गया पछतान्या, कोट मदे किनै पछाणिया हर नामा सच सोई, नानक नाम मिलै वड़ियाई दूजै पाए पत खोई, भगता कै कर कारज साचा हर गुण सदा वखाणे, राम भगत खजाना आपे दिया काल कंटक मार समाणे, राम काल कंटक मार समाणे, हर मन भाणे नाम निधान सच पाया, सदा खुटक देना ने खुटै हर दिया सहज पाया, हर जन उचे सद ही उचे गुर कै शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए जुग जुग शोभा पाया, सूही महला तीजा शब्द सचै सच सोहेला जिथै सच्चे का होए विचारो, राम हो मैं सब किल विख काटे साच रखे और तारे, राम सच रखे और तारे दुत्तर तारे फिर भव जल तर न होई, सच्चा सतगुर सच्ची बाणी जिन सच विखा लिया सोई, साचे गुण गावै सच समावै सच वेखै सब सोई, नानक साचा साहिब साची नाई सच निस्तारा होई, साचा सतगुर सच बुझाया पत राख्या सच सोई, राम सच्चा भोजन भाव सच्चा है सच्चा नाम सुख होई, राम साचा नाम सुख होई मरै ना कोई, गर्म ना जूनी वासा गर्म ना जूनी वासा, ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई सच नाए प्रगासा, जिनी सच जाता से सच्चे होए अंदन सच त्यायन, नानक सच नाम जिन हृदय वसिया ना विछड़ दुख पायन, सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे तित कर सोहला होई, राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई, राम सब सच वरतै सचो बोलै जो सच करै सो होई, जह देखा तह सच पसरिया वरना दूजा कोई,
ਸੱਚੇ ਉਪਜੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਮਰ ਜਨਮੈ ਦੂਜਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਵੈ ਸੋਈ। ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ। ਘੱਟ ਅੰਤਰੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੋ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ। ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਸਾਚੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੋਭਾ ਸਾਚੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਾਚ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਧਨ ਪੇ ਧਨ ਜੇ ਪਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਰਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵ ਨਾ ਕੋਈ। ਰਾਮ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵ ਨਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ ਤਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾ ਵਾ ਹੋਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤਾ ਰਾਵੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤਨ ਬਾਲੜੀ ਹਰ ਵਰ ਭਾਵੇ ਸੋਈ। ਰਾਮ ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹਾਕਣੀ ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਾ ਕੋਈ। ਹੋਮੈ ਮਾਰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਰੜੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਅੰਤਰ ਏਕ ਹੋ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਤਨ ਬਾਲੜੀ ਹਰ ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਰਾਮ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤੀ ਹੈ ਕਾਮਣ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਰਾਮ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ। ਸੱਚਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਾਮਣ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਾਬਤ ਪਛਾਤਾ ਕਾਮਣ ਲਿਆ ਕੰਠ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਪਾਏ। ਸਾ ਤਨ ਬਾਲੀ ਤੁਰ ਮੇਲੀ ਮੀਰੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਈ। ਰਾਮ ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਮਨ ਵਸਾਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਸੱਚ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਮਣ ਨਿਰਮਲ ਹੋਮੈ ਮਲ ਖੋਈ ਗੁਰਮਤ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਨਵੈ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਾਏ। ਰਾਮ ਅਨਦਿਨੋ ਸ਼ਬਦ ਰਵੋ ਅਨਹਲ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ। ਰਾਮ ਅਨਹਲ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਹਰ ਜੀਉ ਕਰਿਆਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਨਾਰੀ। ਅਨਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਾ ਤਨ ਕੰਧ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਕਟ ਅੰਤਰ ਸੇ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਰ ਸਦ ਹੀ ਸੋਹਿਲਾ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਏ। ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਰਾਮ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਹਰ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸਹੀ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਣੀ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ ਸਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਨ ਕੇ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਮੇਲ ਪਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਰਾਮ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਏ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਰਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਮਨੁਆ ਰਤਾ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਰ ਸਦੀ ਸੋਹਿਲਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਮਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤਿਨਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ। ਰਾਮ ਤਿਨਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ ਜਾ ਹਮਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਗਾਵੇ ਰੰਗਰਾਤੇ। ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਸਤ ਹੀ ਜਾਤੇ। ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਧਰ ਜਾਪੇ ਘਰ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵਰ ਬਾਲੜੀਏ ਤਾਗੋ ਚਰਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਹੇ। ਰਾਮ ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਹਰ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਹਜੀਉ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਾ ਤਨ ਕੰਧ ਪਿਆਰੀ। ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਿਗਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਜਿਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਪਿਰ ਪਾਇੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਅੰਦਿਨ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੀ। ਰਾਮ ਗੁਰਮਤੀ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਤਿਨ ਤਿਤ ਤਨ ਮੈਲ ਨ ਰਾਤੀ। ਰਾਮ ਤਿਤ ਤਨ ਮੈਲ ਨ ਰਾਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਅੰਦਿਨ ਰਾਵੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਤੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਬੜਿਆਈ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤੜੀਏ ਪਿਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਰਾਮ ਸੋ ਸੋਹਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਤਾ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਕਾਮਣ ਮਨ ਪਾਣੀ। ਅੰਦਨ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਸਾਚੇ ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਵੈ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਜਿਨ ਹਰ ਸੀਤੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਕਾਮਣ ਮਨ ਸੋਹਲੜਾ ਸਾਜ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ। ਰਾਮ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਧਾਰੇ। ਰਾਮ
हर राखे और तारे अपना कारज सवारे गुरमति हर जाता प्रीतम मोह हे लिया मन मेरा पाया कर्म विधाता सतगुर सेव सदा सुख पाया हर वसया मन मुरारे नानक मेल ले गुरे अपना गुर कै शब्द सवारे सूही महला तीजा सोहरा हर राम नाम गुरु साहब दी विचारे राम हर मन तनो गुरमुख पीजा राम नाम प्यारे राम नाम प्यारे सब कुल उधारे राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया कर आनंद सुर तस्माणी हर हर एको पाया हर प्रभ नानक कृपा धारे सोहरा हर राम नाम गुरु साहब दी विचारे हम निवी प्रभ उच्चा क्यों कर मिलिया जाए राम गुर मेली भव कृपा धारी हर का शब्द सुभाए राम मिलो शब्द सुभाए आप गवाए रंग सवर लिया माने सेज सुखा लीजा प्र पाया हर नाम समाणे नानक सोहा गण सावट पागी जे चलै सतगुर पाए हम निवी प्रभ अत उचा क्यों कर मिलिया जाए राम कट कट्टे सबना विच एको एको राम पधारो राम इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधार हो राम इकना मन आधार हो सृजनहारो वट पागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख लख लखाया सहजे आनंद हुआ मन मान्या नानक ब्रह्म विचारो घट कट्टे सबना विच एको एको राम पधारो राम गुर सेवन सतगुर दाता हर नाम समाया राम हर धूड़ देव हो मैं पूरे गुर की हम पापी मुक्त कराया राम पापी मुक्त कराया भगवाए निज कर पाया वा सब वेक बुद्धि सुख रहन वे हानि गुरमत नाम प्रगासा हर हर आनंद भया दिन राति नानक हर मीठ लगाए गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाए राग सूही महला चौथा छंत घर पहला एक ओहकार सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख मिलाए अवगण विकणा गुण रवा बलराम जियो हर हर नाम त्याए गुरबाणी नित नित चवा बलराम जियो गुरबाणी सत मीठी लागी पाप वेकार गवाया होमै रोग गया पहु पागा सहजे सहज मिलाया काया सहज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत कर भोगो अंदन सुख मन नित रलिया नानक तुर संजोगो सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो संतना कर मेल गुरबाणी गा वाहिया बलराम जियो बाणी गुरगाई परम गत पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तनाठी पाखंड परम गवाया हो मैं पीर गई सुख पाया रोगत पह शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणिंग हीरा मन मुख विचड़ी दूर महल न पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ वे हजे कूड़ लही बलराम जियो कूड़ कवट कमावै महा दुख पावै बिन सतगुर मग न पाया उज्जड़ पंथ पर मैं गावारी खिन खिन तके खाया आपे दया करे प्रभदाता सतगुर पुरख मिलाए जन्म जन के विछड़े जन मेले नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए हृदय तन ओ माहिया बलराम जियो पंडित पादे अणपति बह वचाइया बलराम जियो पति वचाई मन वजी वधाई जब साजन सुने करे आए गुणी ज्ञानी बहमता पकाया फिर तत् दिवाए भर पाया पुरख अगम अगोचर सद नवतन बाल सखाई नानक कृपा कर कै मेले विछड़ कदे न जाई सूही महला चौथा हर पहलड़ी लाभ परवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ हो हर नाम ते आवहो सिमरित नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूरा आराध हो सब किल विख पा गवाया सहज आनंद हो आवड भागी मन हर हर मीठा लाया जन कह नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया हर दूजड़ी लाभ सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो निरभौ पै मन होए हुमै मैल गवाया बलराम जियो निर्मल पाव पाया हर गुण वगाया हर वेख राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्ब रहे पर पूरे अंतर बाहर है प्रभ एको मिल हजन मंगल गाए जन नानक दूजी लाभ चलाई आनंद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाभ मन चाव पया बैरा गिया बलराम जियो संजना मेल हर पाया वड़पा गिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संजना वड़पा गी पाया हर कथिया अकथ कहानी हिरदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिय मस्तक भाग जियो जनो नानक बोले तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो हर चौथड़ी ला मन सहज पया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाए हरे मन तन मीठ मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे पर पाया अंदन हल लाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम भजी वाहदाई हर प्रभ ठाकर काज रचाया तन हृदय नाम वेगासी जन नानक बोले चौथी लावै हर पाया प्रभ अविनासी एक ओहकार सतगुर प्रसाद राग सूही छंत महला चौथा घर दूजा
ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਿਰਦੈ ਰਸਨਰ ਸਾਹਿ ਹਰ ਰਸਨਰ ਸਾਹਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਏ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਬ ਸੁਭਾਏ ਅੰਦਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸੁਖ ਸੋਵੈ ਸਬਦ ਰਹਿਲ ਬਿਲਾਏ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਸਮਾਏ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਿਲਾਏ ਹਰਸਨ ਨਿਰਮਲ ਨਾਏ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਏ ਮੈਲ ਗਵਾਏ ਭੇ ਪਵਿੱਤ ਸਰੀਰਾ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਪਰਮ ਪਾਗਾ ਹੋਮੈ ਬਿਨ ਠੀ ਪੀਰਾ ਨਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਏ ਨਿਜ ਕਰ ਹੋਆ ਵਾਸਾ ਹਰ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਿਆ ਕਟ ਚਾਨਣ ਕਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਇਆ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਏ ਹ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪਾਇਆ

0: संस्कार
1: मेरा
0: योग
1: पीर गई
0: गुरु की
1: बांधी
0: साथी
1: बांधी राम
0: निभाती
1: होए अंधे तू
0: गुरु प्यारे
1: नहीं
0: गुरु गुरु
1: उपजे
0: खालसा
1: जाओ
0: साध
1: मिलन
0: संगत
1: प्रभु
0: जी
1: प्रीतम
0: सारे गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा
1: अरहन
0: वाहिगुरु जी की फतेह।
1: खिनी
0: जुगो जुगे अटल चबर तख छत्र दे
1: अनको
0: मालक
1: भक्त
0: गुर
1: जन
0: तगद्दी ते
1: सारी
0: सुभाईमान
1: सिमरन
0: जागदी जोत धन धन
1: सिमरन को
0: साहिब
1: मुनि
0: श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज
1: संदले
0: जी ने
1: टेक निर्धन
0: बड़ी अपार
1: सान
0: कृपा रहमत
1: पायो
0: बख्शिश कीती है।
1: प्रभु नानक
0: जो अज इस

0: राज चोर लगैया धर्म
1: सबके मन लोच
0: पैया कंचन को
1: परिउपकार नित चित्तवते
0: तज करे हेरू आए।

हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिव लाई

कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कह कबीर संसार नहीं अंत परमगत पाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परमगत पाए।

चौथा जिन ऐसा हर में सेवी है, ऐसा हर सेवी है नित्याई है, जो खिन में किल विख सब करी बिना साई।

मंगण के ताई भीख्या नाम पड़े। बाबा गोरख जागे गोरख सोजन गोए उठाली करते बार न लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए। मरण जीवन को धरती दीनी एते गुण विसरे। सैदका साधक अर जोगी जंगम पीर पुरस्पा तेरे। जैतन मिला ता कीर्ति आखा तामन सेव करे। कागद लून रहे ग्रत संगे पानी कमल रहे। ऐसे भक्त मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन मछिंदरा नानक बोले। वसगत पंच करे ने डोले ऐसी युगत जोग कौ पाले। आप तरे सगले कुल तारे सो अदूत ऐसी मत पावे। एहन सुन समाध समावे रहाओ। भिख्या पाए भगत पै चले होवे सो तृप्त संतोख अमूलै। ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चितलावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन मछिंदरा ओ दूनी साणी। आसा माहे निरास विलाए नहचो नानक करते पाए। प्राणमत नानक अगम सुनाए गुर चेले की सिंध मिलाए। दीख्या दारू भोजन खाए शह दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप परी है पवन लगे मत जाई। सन्मुख सद भेटन को आए नहचो दे बड़ियाई। गुरतार तारण हारिया दे भगत पूर्ण विनासी हो तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद साधक जोगी अर जंगम एक सजनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिन को आया। जापता संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक भेट्यो साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइए एत तन कर तुल्हा लंगे जेत। अंतर पाए तिसे तू रख एनस दीवा बले अथाक। ऐसा दीवा नीर तराए जत दीवे सब सोजी पाए रहाओ। अशी मिट्टी सोजी होए ताका किया माने सोए। करनी ते कर चको टाल ऐथे ओथे निभी नाल। आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूजे कोए। तहत कर दीवा न चल होए पानी मरे न बुझाया जाए। ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाऊ न बड्डा होए। जापे ज्यो सिंघासन लोए खत्री ब्राह्मण सूद के वैस। नृत न पाइया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोए। नानक सोफा रंगत होए राम कली महला पहला। तोदनों निवन मनन तेरा नाओ साज पेट बैसन को थाओ। सत संतोख होवे अरदास तां सोण सद बहाले पास। नानक बिरथा कोए न होए ऐसी दरगह साचा सोए रहाओ। प्राप्त पोता कर्म कम पसाओ तू देवे मंगत जन चाओ। पांडे पाओ पवे तत्याए तुरते छोड़ी कीमत पाए। जन कश किया सो कश करे अपनी कीमत आपे तरे। गुरमंग प्रगट हुआ हराए ना को आवे ना को जाए। लोक तिकार कहे मंगत जन मांगत मान ना पाया। सह किया गला दर किया बाता तै ता कहन कहाया। राम कली महला पहला सागर में बूंद बूंद में सागर कमन बुझे बिद जाने। उत्प जल त्याब कर चीने आपे तत् पछाणे। ऐसा ज्ञान बिचारे कोई तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ। दिन में रैण रैण में देनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गत में त्यवर न जाने गुरबिन समझ न होई। पुरख में नार नार में पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी। तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। मन में जोत जोत में मनुआ पंच मिली गुर पाई। नानक तनकै सद बलिहारी जन एक शब्द लिवलाई। राम कली महला पहला जा हर प्रभ कृपा तारी ता होमे विचो मारी। सो सेवक राम प्यारी जो गुर सबदी बिचारी। सो हर जन हर प्रभ पावे एनस भगत करेंदर राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ। तुन वाजे अणहद कोरा मन मान्या हर असमोरा। गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया। सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पाणी। तै तीर्थ वर तब सारे गुर मिलिया हर निस्तारे। जय आप गया पौ पागा गुर चरनी सेवक लागा। गुर सतगुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया। राम कली महला पहला शादन भोजन मांगत पागे खुदिया दुष्ट जले दुखियागे। गुरमत ने लीनी दुरमत पद खोई गुरमंगत भगत पावे जन कोई। जोगी जुगत सहज कर वासे एक दृष्टि को कर देख्या। भीख्या पाए शब्द तृप्ता सह रहाओ। पंच बैल गड़िया दे तारी राम कला निभे पत सारी। तर तूती गाडो सिर पार लकड़ी बिखर जरी मंझ पार। गुरका शब्द विचार जोगी दुख सो सम करना सोग बेयोगी।
ਭੁਗਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰ।

नानक हर जप उतरो पार। राम कली मोहला पंजवा ईदम ते बैसंतर भागै माटी को जल दैस त्यागे उपर चरण तलहे आकाश कट में सिंध की उपर घास ऐसा

मेरी मन की कार सवारी सगली तन के जाके मस्तक राखे आत ब्रह्म मेरी अनाथ गुना पतु दान कृपा निधान सदा सदा जाइए कुर्बान दिर्बल संत मंत देव जस दान सहित जय विकार अभिमान भी तय साधक संग।

सेनापतिना प्राणी नाम भक्त सुख पाइए गुरु मुख हर हर मीठा लागे हर हर नाम स्वाई रहा माया भू विभर समाया सतगुर पीटे मेल मिलाए नाम रतन हीरे निर्भोल खीरा तितरा तामे रामती राहो मैं मुता रोग न लागे राप जम का पहु पागे जम जदार न लागे भूई निर्बल नाम रते हर सूही शब्द विचार पैंजनकारी गुरमति जागे दुरमति प्रहारी अंदर जाग रहे लिवलाई जीवन मोत गति अंतर पाई अलिप्त गुफा बह रहे दिरारी तत्कर पंचु सब सुंगारी पर कर जाई ना मंडुलाई सहेंद्रत रहु समय गुरुमुख जाग रहे अवधूता सत वैरागी तत्पुरुता जाग सूता मारे आवे जाए बिन गुर शब्द न सोजी पाए अनहद शब्द मजे दिन रात अवगत की गत गुरमत जाती अनसौद जय दिन राति अवगत गत की गत गुरमु जाती तो जानी ता सौद जानी एक रब निर्वाणी सो स्वाद तह तुम राता ता जो लुपाए को जाता गुर चेले अपना मन मानिया दूजा मीठ समानिया आराम कली महला पहला साह गणे करे विचार साई उपर एक अंकार जिस गुरु मिलै सोई पर जाने गुरमत होई ता कुशा ने झूठ ना बोल पांडे सच कही है मैं हो मैं जाए सब कर लही रहा कण कण ज्योत कांडी की नी पड़े सुनावे तत न चीनी सबसे ऊपर गुर सौद विचार हो कतनी बधू ना सगली शार ना वह तो वह पूजे सेला बिन हरा तू मैलू मेला गुरु बिनवाल गर्भ निवार मिले सच सात मुक्त पुराण जप हर कृतात बाचे बाद नबीत विचारे आठ बैग पितरा तारे घट घट अंतर ब्रह्म चीने जन कोई सतगुरु मिले दास सो जी हुई गंत गणी सहसा दुख जी है गुर की शरण पवै सुखती है कर परा शरण माया गुर हर पीठ है गुर भुक माया जूर गुर शरण ना आइये ब्रह्म ना पाइये ब्रह्म बुलाइये जन्म मार आइये अब दरबादू मरे विकार नारद राम ना नारद नाम ना शब्द विचार एक पाठ पंडित ए पांदे पंडित मिश्र कह दुदा राति महल पाए जिस गुर प्रसादी नामदार कोट बजे को जने उतार एक पुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुरु की टेक है गुरमुख विरली एक को जाने आवन जाना बेट समान जिनके हृदय एक का सतगुर सरगुणी साचा विचार गुर कह पाणे कर्म कुमावै नानक साचे सास मावे राम कली महला पहला हट निग्रह कर काया शीजे अवर

मन नहीं सोचा क्या सोच करी जय कित पया दूत काकू दी जय अंत नाम खाहे देही दुख दी जय बिन गुरु ज्ञान तृप्त नहीं ती जय जन मन मुख जन्म है जन्म री जय सतगुरु पूछ।

जसुदनी राधी शिव नगरी में आसन अवधु अलाक अगम पारी काया नगरी यु महाराजा अंजुसह विचारी शब्द रवै कासन का राजा अदल करे भी गुणकारी

आपे कर्ता कारी काया सोध तरय पावसागरी तात्म तत्विचारी गुर सेवाती सदा सुख पाए अंतर सुदर व्या गुणकारी आपी मेले सुख गुणदाता हमें दर्शन मारी त्रै गुण मीटे चौथे वरते ई अस्तर त्रै गुण मीटे चौथे वरते ई हाँ।

अंत विनोद अनंत कूटे प्रे प्रीतम संगनी मन बात फल पाया हरि नानक ना बने संते हिमकर उत्पन्न पापती पाप गुण गुणवंत जियो सखी सहेली गौ मंगलो ग्रह आय हर कंत जियो ग्रह लाल आय मत आय ते सुंदर सोया वर्त त्रिपण पूरे वर्त त्रिपण पय हरिया दिक दर्शन मोहिया मिले स्वामी शिष्य पुनी मन जप्या निर्बल मंत जियो बनवंत नारित करो कृपा हरे त्रिविने त्री तरकंत जियो श्लोक संस साई जी के पवजल तारण हार सब ती उचे जानिए नानक नाम प्यारे जिन जन से तिरे से दूरे से वीर नानक तेन बलिहारणे हर जब उतरे तीर स्वरूप चरण बिरात सब प्रेम मिटिया सगल कले जीव आवण जान दुख करे हर भक्त गया प्रवेश जीव हर रंग राते सहज माते तिलना मानते ही बीतरे तजाप सरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीसरे गोविंद गुण श्रीरंग स्वामी आत्मवादे जीव बिनवंत नारुकमय तहारो जुग जुग एक वेश जीव राम कली महला पहला दक्षिणी ओंकार इक ओंकार सतगुरु प्रसाद ब्रह्मा ओंकार ब्रह्मा उत्पाते ओंकार किया जिंचित ओंकार सैल जुग पे ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरी ओंकार गुरमुख तरी ओन व्यखर सुनो विचार ओन व्यखर त्रिपुण सार सुनो पांडे पांडे क्या लिखो जला लिख राम नाम गुरु गोपाला रहाओ सस सब जग से जीव पाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त हो भए चुन लै महान कमोती सब जय सूजय पढ़ पढ़ पूजय अंत निरंतर साचा गुरमुख दी के साच संभाले बिन साची

अग्नि अस्वरूपा एको पावर पवै त्यो लोए एको बुझे सूझे पतोए त्या चाले संसार रहे गुरुमुखी बिरला को लय सुनो देहि कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊर्म तुनु जोत जाला तीन प्रमणा गुरु गोपाला उगव अस्वरूप दिखावे कर कृपा अपने करे आवे उनु उनु बसै निचर तहारा उगव अस्वरूप उनु बसै निचर तहारा उत्तम सब सवारण हारा इसे के कहा जाने पे आपे करता पे देव उगवै सूर असुर संघारे ऊंचो देख शब्द विचारे ऊपर आद अंत ते हो लोई आपे करे कथे सुन सोई ओह बेदाता मन तन दे ओह बेदाता मन मुख सोई रब जग जीवन अवरण कोई नानक नाम रति पत होई राजे राव रवेत कारण मैलू जमनु अमार रात दिन सरह रंग राता तीन पवन जुग चारे जाता जे जाता सुति सी जे आत निर्वाह लसी दिया रती रव देख भाई अंतर सा शब्द साच ले लाए रोशन की जय अमृत विजय रहे नई संसारी राजे राय रंग निरण आए जाए जुग चारे रहन कहते हे करहन कोई किस पै करो बिनंती एक शब्द राम नाम निरुद्र गुरदेव है पातमती लाज मरंती मर गए कुंकट खोट चली सा दीवानी बावली सत्य संकटली प्रेम बिलाई रेली सुमन में शब्द आनंद

आए विगुता जागते पंत आयन मेचन को सुमरात आसह नीच कर हुई आदिक निवेचे तुई आ तुई तामुद ज्ञान पति बिहुना जग बोनाना सबै बरते एक को सोई जिसनु कृपा करे सतरकट हुई जोग जोग थाप सदा निर्वैर जान मरणे तंदा तैर जो द्विष सुवापी आप उपाय पिकर थाप आप गोचर तंदे लोई जो जो तो जग जी मसोई अग्न गोचर है अरे चार सस हुई ना बिना मूत के हुई बिन ना बे रूत्री क्यों न मिले काटे मन पीर भार हुआ वे जाय क्या ले आया क्या पले पाए बिन ना बे टूटा सौदा लाह दे जा लाह मिले देश जाय बन जुपार बन जेव पारी बिन ना बे कैसी